0: For a commercial break, stay tuned to FM 91.
1: पेपा कार्ड है?
2: है तो फायदा है,
3: पेपाक है
1: तो ऐड टू कार्ड है,
3: पेपाक है
2: इन स्टोर ऑनलाइन एन एटीएम हर जगह चले फायदे पे फायदा दे
0: फॉलो अस ऑन फेसबुक एफ

0: for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
1: पेपा कार्ड है?
2: है? है तो फायदा है,
3: पेपाक है
2: तो ऐड टू कार्ड है,
3: पेपाक है
2: इन स्टोर ऑनलाइन एंड एटीएम हर जगह चले, फायदे पे फायदा दे.
4: पेपाक आज ही अपने बैंक से बनवाए.
5: पास बांड रेमिटेंस रिवॉर्ड स्कीम, मुसलसल 3 माह तक कम से कम 100 अमरीकी डॉलर या किसी भी दूसरी करेंसी में उसके मसावी रकम बैंकिंग चैनल्स के जरिए पाकिस्तान भेजें और अपने प्यारों को पासवान रेमिटेंस रिवॉर्ड स्कीम के जरिए पाकिस्तान में करोड़ों रुपए के इनामात जीतने का मौका फराहम करें. हर सहमाही पहला इनाम 10 करोड़ रुपए, 4 अरब रुपए की मालियत के 2500 से ज्यादा इनाम. पासवान रेमिटेंस रिवॉर्ड स्कीम.
0: Instagram FM91.official.

0: for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
1: पेपा कार्ड है?
2: है तो फायदा है
3: पेपा है
1: तो ऐड टू कार्ड है
3: पेपा है
4: इन स्टोर ऑनलाइन एंड एटीएम हर जगह चले फायदे पे फायदा दे
0: फॉलो अस ऑन फेसबुक

0: for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
1: पेपा कार्ड है?
2: है, है तो फायदा है,
3: है
1: तो ऐड टू कार्ड है,
3: है
1: इन स्टोर ऑनलाइन एंड एटीएम हर जगह चले फायदे पे फायदा दे
4: पेपाक आज ही अपने बैंक से बनवाए.
5: क्या आप जानते हैं अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट किसी गैर फाल मनसूख शुदा या ऐसी सिम से मुंसलिक है जो अब आपके इस्तेमाल में नहीं तो आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट तक रसाई खो सकते हैं. अपने व्हाट्सएप अकाउंट और जाती मालूमात के तहफ़ के लिए इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका व्हाट्सएप हमेशा एक फाल और आपके जर इस्तेमाल सिम से मुंसलिक हो. अपनी सिम की हैसियत बाकायदगी से चेक करें और नंबर तब्दील होने की सूरत में व्हाट्सएप पर अपना नया नंबर बरवक्त अपडेट करें. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए.
0: Instagram FM 91.official.

0: For a commercial break, stay tuned to FM 91.
1: पेपा कार्ड है?
2: है तो फायदा है पेपा
1: है तो ऐड टू कार्ड है
2: पेपा है
3: इन स्टोर ऑनलाइन एन एटीएम हर जगह चले फायदे पे फायदा दे
0: विजिट आवर वेबसाइट www.fm91.com.pk एंड लिसन टू अस लाइव

0: for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
1: पेपा कार्ड है?
2: है तो फायदा है.
3: पेपा है
1: तो ऐड टू कार्ड है.
3: पेपा है
4: इन स्टोर ऑनलाइन एन एटीएम हर जगह चले फायदे पे फायदा दे.
5: Subscribe to our YouTube channel, FM 91 Pakistan.